न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था अभी हो गया. दाने नया मगे हित नमक दुने किया, मैं दम मगे लंग तिपुना, ए दंग मगे हदवत नहीं वेला.

सुबहमान दारम रात्रि रुदाउन अलुत पाया सुबहमान दारम रात तरंगा का अवर्ण वो आत्मया खंबा आनुब पाठ कूर गुन्नक रतु पाठ गाड़निया माल देवटुनु तैगी कोले का सीरो टो ओता मातुरु लही तबा ऐसीन करन हिना होना नहीं था अने मंगे हम पाठक में सीरो टा तगा बेलुए माहा मेरा क्लबुनु गाना था ओ ए हम पाठ कूर के टम हंगी मग दुन्नत नुम्ब में मैंने कुट मंगे हम पाठ की में पाठ वेन्न गाते नॉय वसुन माय ए हम मैंने कुट माटा मत कवेन्न ते पाठ कूर रे किन्ने का क्षेवी के बाबा हरियत नुम्ब दुन्नु रतु गाड़निया मालवल संगवादुन पुरन दुगाना था ඇත්ත මිනිස්සු අසරණම වෙන්නේ පපු පලාගෙන කළ ආදරය ඇතුලේ Taman විතරක්ම රැවටුණා කියලා දැනගත්ත තැන්වල නෝරා තිනුවෙල් නොහොත් නෙතුවනුතරා ඇත්ත මිනිස්සු අසරණම වෙන්නේ පපු පලාගෙන කළ ආදරය ඇතුලේ Taman විතරක්ම රැවටුණා කියලා දැනෙන තැන්වල 0.7 11යි 95යි 95යි 95

आदरणीय थरांगा सुबह मंदारम रह पेवा ओ आदरे दी रावे टीम पिरमिंट वितरक सीमा ने कांतावंट वितरक सीमा ने साक्षी तीन वाती ते इंदन अंधभूत जा